टांग तक टक कधे में तजम तक टक कधे में तक टक टताम तजनो तजनो तधीम तधीम त टांग तक धीमे कड़ तकदीम तधीम त टांग तक धीमे तधीम तधीम तधीम तधीम।